नमस्ते प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष रेडियो कार्यक्रम विदेशियों के नजर में तजकिस्तान। आज का हमारा विषय केवल एक देश का परिचय नहीं है, बल्कि ये समझने का प्रयास है कि

हर राष्ट्र में अपना हेड ड्रेस होता है कि हजारों साल पहले से आज तक लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग की जाती है। आर्यन सभ्यता दुनिया का सबसे प्राचीन माना जाता है कि हम ताजिक लोग उसमें शामिल है। हमारे संस्कृति में हेड ड्रेसेस का अपना स्थान है। ताजिक लोग टोपी को टोकी कहते हैं और आधुनिक जमाने में भी विस्तार से उपयोग करते हैं। आइए इस समय सुनते हैं ताजिक टोकी किस प्रकार के होते हैं और उनके पेंटर का मतलब क्या होता है। ताजिक राष्ट्रीय हेड ड्रेस टोपी या टोकी न केवल एक संग्रहालय प्रदर्शनी के रूप में देश में आम है। टोकी अभी भी युवा और बूढ़े, बच्चे और वयस्क पहनते हैं। विवाह समारोहों और पुरुषों के लिए शोक कार्यक्रमों के दौरान सिर ढकना आवश्यक है। टोकी महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते हैं। ताजिक टोपी के आकार, रंगों के उपयोग, कढ़ाई पेंटर से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि इसका मालिक किस क्षेत्र से है। ताजिकिस्तान के उत्तर में पुरुषों की टोपी चतुष्कोणी होती है और देश के दक्षिण और पूर्व में ये गोल होती है। चतुर्भुज का अर्थ है चार तत्व और गोल टोपी सूर्या के आकार का प्रतीक है। टोपी का पेंटर न केवल एक विशेष कलात्मक चित्र है बल्कि एक तावीज भी है। पामीर में पारसी धर्म के समय से कई पैंतर संरक्षित किए गए हैं। टोपी के शीर्ष पर स्थित पैंतर का अर्थ है सूर्या, किनारों पर पैंतर शेरोज बुरी नजर से। पैंतर का डिजाइन कई प्रसिद्ध आर्य प्रतीकों से मिलता जुलता है, उदाहरण के लिए स्वास्तिका जिसका अर्थ है चार तत्व। प्राचीन जमानों में टोपी सिलने के लिए रंगों का चयन बहुत सख्ती से किया जाता था। क्लासिक पामीर टोपी लाल थी, हालांकि युवा लोग अब अलग अलग रंग चुनते हैं, जिनमें वे रंग भी शामिल है जिनकी इंद्रिय वंशविज्ञानी वास्तव में अनुशंसा नहीं करता है, जैसा कि काला। टोपी मध्य एशिया में इस्लाम के प्रवेश से बहुत पहले ही दिखाई देते थे। हमारे समकालीनों के विपरीत प्राचीन लोग सिर के शीर्ष पर टोपी नहीं पहनते थे बल्कि भौहों तक अपने माथे को पूरी तरह से ढक लेते थे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस तरह वे अपने तीसरी आंख को नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से छुपाते थे और उन दिनों शंकु के आकार के हेड ड्रेस कथित तौर पर एक व्यक्ति को अंतरिक्ष से जोड़ने का काम करते थे। कोसुन के आकार की टोपी देश के पूर्व में रश्त खाती में आम है। कुलोबी टोपी देश के दक्षिण में पहना जाने वाला टोपी है। हथलोंग क्षेत्र में भी आर्य प्रतीकों का प्रयोग होता है। लगभग सभी टोपी में सभी क्षेत्रों में कई सामान्य नियम है। हेड ड्रेस को दृश्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसका अर्थ है चार तत्व या चार मौसम। कुलोब के निवासियों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी पर एक लीली की कढ़ाई की जाती है, जो एक ही समय में जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि का प्रतीक है। इस प्रकार लीली प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध, पृथ्वी पर सभी जीवन के घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। दक्षिण ताजिकिस्तान में टोपी को टोकी कहा जाता है। वे बहुत चमकीले होते हैं और रंग और आभूषण में भिन्न होते हैं। कुलोब, दरबोज, करोतेगिन, वोसे, खोवालिंग में ऐसे युवक या पुरुष को ढूंढना असंभव है जो अपने सिर पर कला का वास्तविक काम न पहना हो। पर्वतीय क्षेत्रों की टोकी शंखवाकर और सपाट ताल वाली होती है। उन्हें तैयार कढ़ाई के साथ लगातार किरानों के साथ केंद्र से किनारे तक सिला जाता है। टोकी के आभूषणों में मुख्य पेंटर गुलाब, सितारे, ट्यूलिप, क्रोस, ज़िगज़ैग, जानवरों की अल्प विकसित छवियां इत्यादि है।
मरिया एशिया में एक भी उत्सव बिना तोके की नहीं होता। जब एक ताजिक लड़के की शादी होती है तो उसके दहेज में कई तोपिया होनी चाहिए। शादी में दुल्हा तोपी के बिना नहीं रह सकता। उसके लिए इसका अर्थ जीवन के अधिक परिपक्व काल में गुजरना है। युवाओं के सिर पर टोपी रखकर बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उत्तरी ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की टोपी को टूपी कहा जाता है। वे शक्ल और आभूषण में अलग है। बादाम के आकार के चार ओपनरवाक आकृतियों के सफेद महीन कढ़ाई के साथ गहरे रंग की पृष्ठभूमि, जिसे बैंड पर समान कढ़ाई के साथ बॉर्डर किया गया है। महिलाओं की टोपी साथ ही टूपी आकार में चतुष्कोणी है, जिन पर सोने और मोतियों की कढ़ाई की जाती है। टोपी का एक व्यावहारिक कार्य भी है। ताजिकिस्तान की जलवायु गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडी होती है। ऐसे माहौल में सूती कपड़े से बनी टोपी सिर को धूप और ठंड से पूरी तरह बचाती है। एक टोपी को सिलाने में एक शिल्पकार को 1 से 3 साल तक का समय लगता है, जो हाथ से कढ़ाई किए गए पेंटर पर निर्भर करता है। पारंपरिक टोपी सिलने के अधिकांश कारीगर अपने माता पिता और दादी नानी से सिलाई कौशल सीखते हैं। ये शिल्प पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। हाल के वर्षों में टोपी की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है। आदरणीय श्रोताओं, ताजिकिस्तान में टोपियों के प्रकार, उनके पेंटरों के प्रतीक, ताजिक लोगों के बीच टोपियों की लोकप्रियता पर हमारे प्रोग्राम आपके लिए पेश किया गया। उम्मीद है कि कोई भी नई जानकारी आपको मिल गई हो।

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।

नमस्ते प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष रेडियो कार्यक्रम विदेशियों के नजर में तजकिस्तान। आज का हमारा विषय केवल एक देश का परिचय नहीं है, बल्कि ये समझने का प्रयास है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आने वाले लोग तजकिस्तान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वे इस देश में क्या अनुभव करते हैं और क्यों तजकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान बना रहा है।

0: पूरन है। हिसार किले का विशाल स्वरूप वास्तव में प्रभावित करता है। मैंने जाना कि ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इतिहास के दौरान ये महान रेशा मार्ग पर स्थित था। इस क्षेत्र में कारवान, यात्री और व्यापारी गुजरते थे। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान था जहां लोग लंबी यात्रा के दौरान सुरक्षा और विश्राम पाते थे। तजिकिस्तान ने अपने प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और लोगों की मेहमान नवाजी से मुझ पर बहुत गहरी और सकारात्मक छाप छोड़ी है। तजिकिस्तान का नाम सुनते ही विदेशी लोगों को इस भूमि से जुड़े महान विद्वानों और कवियों की याद आती है। इनमें विशेष रूप से शामिल है अबू अली इब्न सीना, अबू अब्दुल्ला रुदकी, फिरदौसी, जलालुद्दीन रूमी और अन्य महान हस्तियां। विदेशी विश्वविद्यालयों में ये स्वीकार किया जाता है कि इन महान व्यक्तियों ने विश्व साहित्य, चिकित्सा, दर्शन और विज्ञान को नई दिशा दी है। विशेष रूप से इब्न सीना की चिकित्सा कृतियां आज भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की नींव मानी जाती है। विदेशी यात्रियों का सबसे अधिक ध्यान ताजिक लोगों की मेहमान नवाजी पर जाती है। लगभग हर पर्यटक ये कहता है कि ताजिक लोग अतिथियों का स्वागत पूरे दिल से करते हैं। यहाँ अतिथि को भगवान के समान सम्मान दिया जाता है। कई विदेशी ब्लॉगर्स और यात्रियों ने लिखा है कि तजिकिस्तान में उन्हें घर जैसा महसूस हुआ है। गांवों में लोग मेहमानों को चाय, भोजन और मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। ये संस्कृति ताजिक समाज की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। और पाकिस्तान से इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनकी राय तजिकिस्तान और हमारे खूबसूरत दुशांबे के बारे में इस प्रकार है।
1: दुशांबे इस कदर खूबसूरत शहर है कि देयर इज नो पैरेलल टू इट। इमारत, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, सफाई और खूबसूरती और ओपननेस। जैसे हम कल एक म्यूजियम गए, एक और आई थिंक कोई नौरूज पैलेस था, वहाँ गए, वहाँ बच्चे गा रहे थे, नाच रहे थे। इतना खुला माहौल है यहाँ का कि मतलब इट्स ब्यूटीफुल कि हर बंदा सेलिब्रेट करे लाइफ को। लाइव सेलिब्रेट हो रही है, डेवलपमेंट सेलिब्रेट हो रही है एंड वी सी हैप्पीनेस एवरीवेयर। और जब से हम भी आई थिंक दो दिन हो गए हमें दुशंबे आए हुए, खूबसूरती एब्सोल्युट दिल खुश हो जाता है जब भी हम किसी भी हॉल से बाहर निकलते हैं, दुशंबे का नज़ारा करते हैं। तो हर एक नज़ारा दुशंबे का जो है ना वो मुनफरिद है। हर बंदा इतनी प्यार मोहब्बत से, एहतराम से हमसे मुलाकात कर रहा है, हमें खानों पर लेके जा, तो ये बहुत खूबसूरत, एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। देखें वो पर्शियन डिसेंट है, उर्दू का भी पर्शियन डिसेंट है, और उसके बाद तो उसको लश्करी, उर्दू को कहते हैं लश्करी ज़ुबान। तो बिकॉज वो ट्रैवल होती होती पाकिस्तान तक पहुंच गई, और पर देखें ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, फिर उसके बाद हमारा जो बॉर्डर, हमारा बॉर्डर नहीं है बट हम अफगानिस्तान के बीच में एक वखान, एक पट्टी है, वो आई थिंक मैक्सिमम 10 किलोमीटर की है। अगर हम वहाँ से ब्रिज बना लें तो हम बॉर्डर स्टेट्स भी बन सकते हैं। तो ज़ाहिर है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान आर लाइक ब्रदर्स, दे फील फॉर ईच अदर। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर बात करें तो ताजिकिस्तान भाई हैं, अगर पाकिस्तान ताजिकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान भाई हैं। तो आई थिंक जो मोहब्बत और बॉन्ड है दोनों मुल्कों के अंदर, लोगों के अंदर, हुकूमतों के अंदर, वो हमेशा से लाजवाब रहा है।
0: ताजिक भोजन भी विदेशियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। विशेष रूप से पुलाव, कुरताप, सम्बूसा, मांतू और अन्य पारंपरिक व्यंजन विदेशी पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। ताजिक फलों जैसा अंगूर, अनार, खुबानी, तरबूज और खरबूजा की मिठास भी दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करती है। कई विदेशी शॉप और फूड ब्लॉगर्स ने ताजिक भोजन को सरल लेकिन अत्यंत स्वादिष्ट बताया है। पिछले कुछ वर्षों में तजिकिस्तान ने पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। इस नई सराकेन होटल, पर्यटन केंद्र और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने देश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दी है। आज हजारों विदेशी पर्यटक तजिकिस्तान में ट्रेकिंग, पर्वतीय यात्रा, इको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए आते हैं। वे यहाँ की प्रकृति, सुंदरता और शांत वातावरण से बहुत प्रभावित होती है। विदेशी विशेषज्ञ तजकिस्तान को एक शांति प्रिय और स्थिर देश के रूप में देखते हैं। कई रिपोर्टों में ये उल्लेख किया गया कि तजकिस्तान मध्य एशिया के सबसे शांत और सुरक्षित देशों में से एक है। इसके अलावा जल और पर्यावरण के क्षेत्र में तजकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत जल संबंधी पहलें और ग्लेशियर संरक्षण के प्रयासों ने तजकिस्तान की वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। विदेशी पर्यवेक्षक ताजिक युवाओं के मेहनती, प्रतिभाशाली और शिक्षा प्रेमी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में ताजिक युवाओं की उपलब्धियों देश और उज्ज्वल भविष्य का संकेत देती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से ये स्पष्ट होता है कि तजकिस्तान केवल एक देश नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और मानवीय मूल्यों का एक अनोखा संगम है। विदेशी लोगों की नज़र में ये देश शांति, सुंदरता, इतिहास और आत्मीयता का प्रतीक है। हमें अपने देश की इस सुंदर छवि को बनाए रखना चाहिए और दुनिया के सामने इसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। इसी संदेश के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम को। तजकिस्तान शांति, मित्रता और सुंदरता की धरती।

हर राष्ट्र में अपना हेड ड्रेस होता है कि हजारों साल पहले से आज तक लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग की जाती है। आर्यन सभ्यता दुनिया का सबसे प्राचीन माना जाता है कि हम ताजिक लोग उसमें शामिल है। हमारे संस्कृति में हेड ड्रेसेस का अपना स्थान है। ताजिक लोग टोपी को टोकी कहते हैं और आधुनिक जमाने में भी विस्तार से उपयोग करता है। आइए इस समय सुनते हैं ताजिक टोकी किस प्रकार के होते हैं और उनके पेंटर का मतलब क्या होता है। ताजिक राष्ट्रीय हेड ड्रेस टोपी या टोकी न केवल एक संग्रहालय प्रदर्शनी के रूप में देश में आम है। टोकी अभी भी युवा और बूढ़े, बच्चे और वयस्क पहनते हैं। विवाह समारोहों और पुरुषों के लिए शोक कार्यक्रमों के दौरान सिर ढंकना आवश्यक है। टोकी महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते हैं। ताजिक टोपी के आकार, रंगों के उपयोग, कढ़ाई पेंटर से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि इसका मालिक किस क्षेत्र से है। ताजिकिस्तान के उत्तर में पुरुषों की टोपी चतुष्कोणी होती है और देश के दक्षिण और पूर्व में ये गोल होती है। चतुर्भुज का अर्थ है चार तत्व और गोल टोपी सूर्य के आकार का प्रतीक है। टोपी का पेंटर न केवल एक विशेष कलात्मक चित्र है बल्कि एक तावीज भी है। पामीर में पारसी धर्म के समय से कई पेंटर संरक्षित किए गए हैं। टोपी के शीर्ष पर स्थित पेंटर का अर्थ है सूर्य, किनारों पर पेंटर शेरोज बुरी नजर से। पेंटर का डिजाइन कई प्रसिद्ध आर्य प्रतीकों से मिलता जुलता है, उदाहरण के लिए स्वास्तिका जिसका अर्थ है चार तत्व। प्राचीन जमानों में टोपी सिलने के लिए रंगों का चयन बहुत सख्ती से किया जाता था। क्लासिक पामीर टोपी लाल थी, हालांकि युवा लोग अब अलग अलग रंग चुनते हैं, जिनमें वे रंग भी शामिल है जिनके केंद्रीय वंशविज्ञानी वास्तव में अनुशंसा नहीं करते हैं, जैसा कि काला। टोपी मध्य एशिया में इस्लाम के प्रवेश से बहुत पहले ही दिखाई देते थे। हमारे समकालीनों के विपरीत प्राचीन लोग सिर के शीर्ष पर टोपी नहीं पहनते थे बल्कि भौहों तक अपने माथे को पूरी तरह से ढक लेते थे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस तरह वे अपने तीसरी आंख को नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से छुपाते थे और उन दिनों शंकु के आकार के हेड ड्रेस कथित तौर पर एक व्यक्ति को अंतरिक्ष से जोड़ने का काम करते थे। कोसुन के आकार की टोपी देश के पूर्व में रश्त खाती में आम है। कुलोबी टोपी देश के दक्षिण में पहना जाने वाला टोपी है। खतलोंग क्षेत्र में भी आर्य प्रतीकों का प्रयोग होता है। लगभग सभी टोपी में सभी क्षेत्रों में कई सामान्य नियम है। हेड ड्रेस को दृश्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसका अर्थ है चार तत्व या चार मौसम। कुलोब के निवासियों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी पर एक लीली की कढ़ाई की जाती है, जो एक ही समय में जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि का प्रतीक है। इस प्रकार लीली प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध, पृथ्वी पर सभी जीवन के घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। दक्षिण ताजिकिस्तान में टोपी को टोकी कहा जाता है। वे बहुत चमकीले होते हैं और रंग और आभूषण में भिन्न होते हैं। कुलोब, दरवोज, करोटेगिन, वोसे, खोवालिंग में ऐसे युवक या पुरुष को ढूंढना असंभव है जो अपने सिर पर कला का वास्तविक काम न पहना हो। पर्वतीय क्षेत्रों की टोपी शंखवाकार और सपाट ताल वाली होती है। उन्हें तैयार कढ़ाई के साथ लगातार किरानों के साथ केंद्र से किनारे तक सिला जाता है। टोपी के आभूषणों में मुख्य पेंटर गुलाब, सितारे, ट्यूलिप, क्रॉस, ज़िगज़ैग, जानवरों की अल्प विकसित छवियां इत्यादि है।
مالیا ایشیا میں ایک بھی اتساو بینا توقی کی نہیں ہوتا. جب ایک تاجک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے دہیج میں کئی توپیاں ہونی چاہیے. شادی میں دلہا توپی کے بنا نہیں رہ سکتا. اس کے لیے اس کا ارتھ جیون کے ادھک پریپکو کال میں گزرنا ہے. یوواؤں کے سر پر توپی رکھ کر بزرگ انہیں آشیرواد دیتے ہیں. اتری تاجکستان اور ازبیکستان کی توپی کو توپی کہا جاتا ہے. وہ شکل اور آبھوشن میں الگ ہے. بادام کے آکر کے چار اوپنر واک آکرتیوں کی سفید مہین کڑھائی کے ساتھ گہرے رنگ کی پرشت بھومی جسے بینڈ پر سمان کڑھائی کے ساتھ بارڈر کیا گیا ہے. مہیلاؤں کی توپی ساتھ ہی توپی آکر میں چتوش کونی ہے جن پر سونے اور موتیوں کی کڑھائی کی جاتی ہے. توپی کا ایک ویوہارک کاریا بھی ہے. تاجکستان کی جلوایو گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوتی ہے. ایسے ماحول میں سوتی کپڑے سے بنی توپی سر کو دھوپ اور ٹھنڈ سے پوری طرح بچاتی ہے. ایک توپی کو سلانے میں ایک شلپکار کو ایک سپتاہ سے 3 سال تک کا سمے لگتا ہے جو ہاتھ سے کڑھائی کیے گئے پینٹر پر نربھر کرتا ہے. پارمپرک توپی سلنے کے آدھکانش کاریگر اپنے ماتا پتا اور دادی نانی سے سلائی کوشل سیکھتے ہیں. یہ شلپ پیڑھی در پیڑھی ہستانترت ہوتا ہے. حال کے ورشوں میں توپی کی قیمتوں میں بھی کافی وریدھی ہوئی ہے. آدرنیہ شروتاؤں, تاجکستان میں ٹوپیوں کے پرکار ان کے پینٹروں کے پرتیک تاجک لوگوں کے بیچ ٹوپیوں کی لوکپریتا پر ہمارے پروگرام آپ کے لیے پیش کیا گیا. امید ہے کہ کوئی بھی نئی جانکاری آپ کو مل گئی ہو.

आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।